महबूबे बीमा तके कहा कि सनमाने डिमांड निकाले रकान संकट श्री गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी देखकर बड़ी उम्मीद के नाम में बेटी गुरु शासन जी आपकी सरकार के काबिल हो जो आपकी जिंदगी के इतने अहम करे मसलों के बीचों आपकी इस्तीफा कटिया जो आपकी ने सोच लिया कर आपको उत्तर बाद में जाना है एक गल नाल आज हो गई सब कुछ टूट पैंडा आगे हो गई थे अच्छा जी ने आप बड़े सुंदर अंदाज के नाल उस संगीत की गलत गलत की सचियो विद्वान लोग बैठे कंकन जी रणजीत सिंह साहब जी दशिया साहब जी कान जी मेरे जी अजिंदर सीतल सिंह जी बैठे हैं सच सिंह जी जो संगीत है गाने का एक गलत नहीं मजबूत बिल्कुल गलत नहीं ये कन्या जी गल पै गई कद ही इन्हें राजी हो गए इन्हें राजी नहीं सिर्फ बनने ये गल का मजबूत ना बनता गल है आज गल है मेहनत की जिन की सुपारत है जिड़ा मर्जी करता है एक कर्म का कर्म है गल का कोई मजबूत नहीं जिन्हें करना है उन साधन की होगी नहीं मिलनी पहली गल साढ़े तेरे अखर लग गया है ये तो आड़ है सच हिंदी भाई साहब ने कहा तो खाली पर राह बिल्कुल नहीं मिलता थी ये सब तंत्र शुभ है मैं दो गल कह के सच हिंदी दुनिया के दो फाइन आर्ट हैं तीजा दुनिया के काम कोई दो बेड़े काम गाना ते पेंटिंग पेंटिंग का वजूद बन गया गाने का कोई स्वरूप नहीं ना शब्द का स्वरूप है ना आद का स्वरूप है ना परमेश्वर यह अनिज बात है जब जो सू समझ आ गई कीर्तन की है तो फिर तो सत्संग की आबादत की लड़ नहीं झगड़े की लड़ नहीं झगड़े खत्म हो जाएंगे लाश 25 मिनट टाइम है लाश तकरीबन 20-22 मिनट अंग्रेजी समाप्ति करेंगे शब्द की टीक है आपे खुद चेला है आपे आपे हर प्रभ चोट बनाणी राग तकलीफ है शर्म करेंगे क्या भी नहीं कह सकते एक बहुत महान बात है ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਤੀਭਾ ਹੈ ਆਓ ਆਪਣੀ ਬੋਲਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਮੈਂ ਪੂਰ ਸਕਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਦੋ ਨਜੀ ਸਿੰਘ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ

दुर्लभ जन्म चिरंकाल पायो जात्यो कौटी बदला कथूरी को गाहक आयो लाद्यो काल बिरख जिबा आयो लाभ लापन के ताई आयो लाभ लापन के ताई मोहन ठगौरी श्योपुर जिपा मोहन ठगौरी।

अगर कोई सोच आ जाता, अगर कोई सोचन आता मतलब पाप करके किस तरह भेजना, किस तरह खत्म करना, वाहेगुरु के नाम हर बारी जो एक सोच आ जाता उन्होंने वाहेगुरु के नाम भेजो रब वाल तेरे को नहीं रहेगा है वाहेगुरु का मतलब कारण यही है असं ता ही वरतते हैं कि असी खालसा बन जाए खालसा।

पीजे बार बैठे हैं सुन ना पीजे रूपी माली रंग ना पीजे तीर्थ पविए नंग ना पीजे पेड़ मरे पिड़ सूर कोई बड़ा सुरमा होए अपने आप नू खत्म कर देवे रण विच रब नहीं पीजदा ना पीजे केते होवे तूड़ कोई अपने आप नू तूड़ भी बना ले पर आखिर विच गुरु पातशाह गुरु रामदास महाराज सारंग दी वार विच कहंदे हन लेखा लिखिए मन के पाए जे तेरा मन ही नहीं होया

0: Una porque se manda en general.
1: प्रसाद सिंह जी, हम तक आप जी ने यह सुनिया है, गुरु बाबा जी का सुनेहा कि अपनी सारी मत, अपनी सारी सियाणप क्योंकि साढ़े पास नहीं है, छड़ दो तो कहते हैं गुरु की मत को ले आने, आने गुरु की मत लै, क्योंकि भगत बिना बहुत डूबे सियाने, बहुत बड़े बड़े सियाने जोड़े हैं वो गुरु की मत तो बिना भगती नहीं आती, बिना भगती तो बहुत व्डे व्डे सियाने जो हम वो अपनी सियाणप के बीच ही डिग जाते हैं, अपनी सियाणप के बीच ही डिग जाते हैं। इस करके प्रेम नाल आओ, इस पंक्ति में गाओ, उपरंत अगे चल गए।

कबीर साहब जी की बाणी की एक पंक्ति बहुत प्यारी लगती है, क्योंकि उन्होंने बहुत सोच गल आखी, बड़ी अजीब गल आखी। कबीर साहब कहते हैं, गुरु प्रसाद अकल सही अवर है। लफ्ज़ बहुत गौ नाल सुनना, कहते गुरु की कृपा के नाल

नहीं माए सो ब्रह्म बताए गुर मन ही माए मेरे चित न चले मन पयो पंग मेरे चित न चले मन पयो पंग मेरे चित न चले।

0: टेक है क्या गुण तेरे साथ माली, शुरुआत है मैं मूर्ख की केत की बात है, कोट अपराधी तरिया रे, गुरु नानक सुनया पे किया
1: से फिर गरवास ना पड़े।

किस प्रयास सुनाइए कहने कथन नीजे गोविंद हर भावे खाई अवर ओट में सगली देखी अवर ओट में

शब्द है कांडा मोहल्ला चौथा पड़ताल। मन जापहो राम गोपाल, हर रतन जवे हर लाल, हर गुरमत गुरमुख कड़ टक साल, हर हो किरपाल। किरपा होवेगी होवेगी, मन नाल जपो सतनाम। कोई भुलेखा नहीं रहिंदा, थोड़ा जा ध्यान देने की लोड़ है। किरपा होएगी हो दो बार आख्या, होवेगी किरपा होवेगी किरपा। पर मन जाप हो राम गोपाल, वो सृष्टि नू पालन वाला जिहड़ा जर्रे जर्रे च है, उन्हूं मन करके जपो। मन और जबान एक करके आखो सतनाम। यह मोलक रतन है। मन जाप हो राम गोपाल, हर रतन जवे हर लाल, हर गुरमुख कड़टक साल, हर हो कृपा। ये अस्थाई है, ये चार ताल च। पहला अंतरा है तुमरे गुण अगम अगोचर, एक जी क्या कथे बिकारी। तेरे गुण बेअंत ने ते मेरी एक जबान की कह सकती है। तुमरे गुण अगम अगोचर, एक जी क्या कथे बिचारी। राम राम राम राम लाल, तुमरी जी अकथ कथा, तू ही जाने। तेरी गति नू कोई नहीं जान सकता, सब आखो सतनाम। हर की गत ने को जाने, तुमरी जी अकथ कथा, तू ही जाने। हों हर जब पई निहाल निहाल निहाल, तेरी गति नू तू अगाध बोध है, कोई जान नहीं सकता। पर यह जरूर है कि जेड़ा जपूगा ना वो निहाल निहाल निहाल हो चुका। तू बेअंत है, तेरे गुण बेअंत ने कोई जान ही नहीं सकता, बेअंती। आप शब्द रोज पढ़ते हैं, तू सुल्तान कहा हो मियां, तेरी कौन वडाई। किसे बादशाह नू क्या जो आओ मियां जी, तू सुल्तान कहा हो मियां। एक बादशाह नू क्या जाए मियां जी, ये कोई वडियाई तो नहीं। गुरु नानक साहब कहते ने तू एडा वड्डा है, जो तेरी उस्तत होण तक हो रही है ना वो इन्हीं की है कि किसी बादशाह नू मियां किया जाए। तू सुल्तान कहा हो मियां, तेरी कमर वडाई। इस शब्द विच महाराज कहते ने तुमरे गुण अगम अगोचर, एक जी क्या कथे बिचारी। राम राम राम राम लाल, तुमरी जी अकथ कथा, तू ही जाने। हों हर जप पई निहाल निहाल निहाल। दूसरा अंतरा है हमरे हर प्राण सखा, स्वामी हर मीता, मेरे मन तन जी हर हरे हरे, राम नाम तन माल। जां को भाग तिन लियो री सुहाग, हर हर हरे हरे गुण गावे गुरमत, जन नानक हर जप पई निहा निहा निहा। हुण इसका कीर्तन एक सैकड़े वर्ष पुरानी गुरु साहब के समय दी यह रीत है। गुरमुखा वालों हुक्म होया सी ये असी रीत कल बचन किया। सरदार प्रहलाद सिंह जी सास सुरेंद्र सिंह होर ने यह असी जरूर सुननी, क्योंकि सेवका ने अज का कीर्तन ही है, फिर सवेरे तड़के चले जाना। असी इस वास्ते ये आपकी
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਰੀਤ ਇਹ ਆਪਦੀ ਭੇਟਾ ਹੈ।

जिन सतगुर पुरख मनाया तिन पूजे सब कोई, जिन सतगुर प्यारा सेविया तिन सुख सद होई, जिना नानक सतगुर भेटिया तिना मिलिया हर सोई।